0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: और सुपरलाने के व्यवहार जो है नहायत लेर आज हमें सीखे था वो सुख मस्माई दिखा रहे थे दिखा रहे
0: थे 和下的狂歌日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 现在割草全部说出来牛出天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓墨
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 东炉子是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛但我儿子这一代了也养两代人了
0: 山河不老生生不息

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: और चपाल के व्यवहार जो है नहायत लैब अच्छा हमें सीधा वो सुखम समय देखा उसके व्यवहार
0: 和氏下的狂歌日夜不息雕琢山河